चरण लाग हम बिनवता। पूछ कह जी उपाया कवन का जग उपजे बिन से कहो मोहे समझाया। भगत कबीर जी का शब्द है। इस शब्द दे विच जो विचार साड़ी कल चल रही सी, सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाने। महाराज जी आखदे नानक कहे और नहीं दूजा साच शब्द मन मान्या। कहिंदे हन साडियां निगाहां च होर कोई दूसरा प्रवान नहीं है, सिर्फ ओयो ही बंदा प्रवान है जिसने अपने आप नूं पछाण लिया है कि वो कौन है। चाहे वह गृहस्थी होवे चाहे वह सन्यासी होवे, बहुत वड्डियां भागां वाला है, धन भागी है, बहुत महान है जिसने अपने इस जीवन दे विच अपने आप नूं पछाण लिया। तो महाराज जी आखते हैं आप पछाणो तां शह जानो। शह मैंने अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने आप नूं पछाणोगे तां ही वाहिगुरु नूं पछाणोगे, क्योंकि साडा अपना आपा अते वाहिगुरु एक ही है। अपने आप नूं पछाणन दा मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु दी प्राप्ति, अकाल पुरख वाहिगुरु दी पहचान है, उसका मिलन है। तो जिसने रब नूं ढूंढना है, जिसने रब नूं पाना है, उसनूं बाहर जाण दी जरूरत नहीं है, उसनूं अपने अंदरों उसनूं लभना पएगा। सारी गुरबाणी का सिद्धांत इस असूल दे उत्ते टिक्या पिया है। अकाल पुरख वाहिगुरु नूं प्राप्त कीते तो बिना इस जीव की गति नहीं होंदी, ये शांत नहीं होंदा, इसनूं टिकाओ नहीं आउंदा, इसनूं खेड़ा नहीं आउंदा, इसनूं तृप्ति नहीं आंदी। अकाल पुरख वाहिगुरु नूं विसरन नाल इसनूं खुआरी हुंदी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा ईर्खा वैर विरोध आदि अत्यंत मानसिक बीमारियां इसनूं खा जांदियां हन, इसके जीवन नूं जहर बना दिंदियां हन। जदों परमेश्वर जिंदगी भुल जाए उदों महाराज जी आखदे हन सारे रोग आ चुमड़दे हन। परमेश्वर ते भुल्लिआं व्यापन सभे रोग। तो परमेश्वर की प्राप्ति, अकाल पुरख वाहिगुरु की प्राप्ति, और सृजनहार की प्राप्ति साडे जीवन का सब तो अहम, सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मनोरथ है। महाराज जी आखते हैं जन नानक बिन आपा चीने। चीने का मतलब हुंदा है लभना, बुझना, रियलाइज करना। कहते हैं जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। कहते अपना आपा चीने तो बिना, अपना आपा लभन तो बिना जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, वो कहिंदे तुहाडी जिंदगी चो जा नहीं सकता।
ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੂਜਨ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੂਜਨ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੂਜਨ ਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਇਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲੂਜਨਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੂਜਨ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੇ, ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੇ ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਲੂਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੇ ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ, ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ, ਆਵਤ ਕੋ ਜਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਤੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਪਰਖੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਹੇ ਆਪਣੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਕੜੂਆ ਕਹੇ ਕੌੜੇ ਕੋ ਮਿੱਠਾ, ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਰੱਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਲ ਮੈਂ ਬੀਠਾ। ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਕਲ ਮੈਂ ਬੀਠਾ, ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚੇਰੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਵਿਰੋਲੀਏ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਰੀਸੇ, ਪੋਖਰ ਯਾਨੀ ਛੱਪੜ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਵਿਰੋਲੀਏ ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਰੀਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਏ ਲੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਚੀਨੇ ਆਪ ਕੋ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਚੀਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚੀਨੇ ਆਪ ਕੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚੀਨੇ ਆਪ ਕੋ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਸੋ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭਰਮ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੂਜਨ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦੇ।
और जितनी देर तक भरम नहीं मुकदा, भरम नहीं मिटदा, उतनी देर तक कोई भी इंसान जन्म मरण चो, बीमारियां चो, विछोड़े चो, खुशी गमी चो, दुखां सुखां चो, सोगां रोगां चो मुक्त नहीं हो सकता। कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन परमा, जब लग टूटे ना ही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई। उदों तक कोई भी इंसान मुक्त नहीं है, वो तमाम किस्म के बंधना दे विच है। गुरु बाबा जी कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन परमा, जदों तक मन का परम नहीं टूट जाता, जो है वो नजर नहीं आ जाता, असलियत रियलिटी ट्रूथ जो वो नहीं जान जाता, महाराज तो यह भी आखते हैं कि उसनु मूर्ख भी आख्या जा सकता। मूर्ख सच ना जाने ही आसा दे वारच लिखे है ना, मूर्ख सच ना जाने, सच नहीं जानता कि है कि जिस तरह रात का समा होवे, एक रस्सी पई होवे, एक इंसान डरी जाए कि सप पिया है मेरे च, उसमें सप नजर आ गए, वो भरम है, वो रियलिटी नहीं है, वो असलियत नहीं है। जितनी देर तक वो असलियत नु नहीं जान दिंदा कि है कि, उतनी देर तक कहते हैं मूर्खता ही जीवन है। मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आए, उस तक आना जरा कोई सफला नहीं हो। सो कहते हैं जब लग टूटे ना ही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई। जितनी देर तक परम नहीं टूट जाता उतनी देर तक कोई मुक्त नहीं हो सकता, और जितनी देर तक आपा नहीं चीनते उतनी देर तक परम नहीं टूट सकता। तो ये साड़ी कल दी विचार सी। गुरु महाराज जी आखदे चाहे कोई उदासी है, चाहे कोई दृष्टि है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया च रहिंदा है, चाहे कोई अमेरिका च रहिंदा है, चाहे कोई इंडिया च रहिंदा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बहुत सक्सेसफुल है, चाहे अनसक्सेसफुल है, मेरी नजर दे विच कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, मैंने तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं लगता। क्योंकि अगर मनमुखी जन्म गवाया ही होना है तो महाराज कहते विच दुनिया काहे आया, तो फिर सक्सेस कादी हो। अगर असि अखीर च अपना जीवन जो है हार के ही जा रहे हैं तो फिर सक्सेस किस चीज की हुई। सक्सेसफुल तो वो है जो इस मनुखा जन्म दे विच आके जो रियलाइज करना सी उसनु रियलाइज करके जा रहा है।

लेकिन गुरु बाबा जी ये आखते हैं सब जग हारे, सारा जगत ही हार के जा रहे, कोई भी तो सक्सेसफुल नहीं जा रहा। वो करोड़ा चो एक अद है जो गुरु के शब्द की विचार नाल अपने आपे नू पहचानदा है। सो विचार हुण चली है अज अपने आपे नू पहचानन दी। ओयो ही दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, ओयो उदासी पूर्ण उदासी है। इट मेक्स नो डिफरेंस कि तुसी उदासी हो जा दृष्टि हो। सवाल इस चीज का है कि तुसी अपने आपे नू पहचानिया जा नहीं पहचानिया, उसनू पहचानन दे वास्ते एफर्ट्स कर रहे हो जा नहीं कर रहे हो, उसनू पहचानन दी विधि ढंग टेक्निक्स तुहानू आंदी है जा नहीं आंदी। सो अज दे कीर्तन तो जितने कीर्तनगा होंगे वो इस चीज ते होंगे कि आपा किवें पहचानिया जांदा है, किवें पहचानिया जांदा है, आपा पहचानन लई किस किस चीज की जरूरत है। उन्हां एलीमेंट्स दे विचों एक भी अगर मिसिंग होएगा आपा पहचानिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो टेक्निक्स है वो उन्हां दियां बनाईयां होईयां हन जो जानते हैं कि आपा किवें पहचानिया जाता है, जो पहचान चुके हैं उन्हां दा रस्ता दस्या होया है। ये गुरु बाबा नानक देव जी का रस्ता दस्या होया है अपना आपा किवें पहचानिंदा है, जो आप अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का स्वरूप सन, क्योंकि उही दस सकता है ना। आज की दुनिया च बहुत लोग दसन की कोशिश करते हैं आपा पहचानन दी, सैल्फ रियलाइजेशन दी बड़िया किताबा मिलदियां हैं, पर अखीर दे विच जाके वो ये नहीं दस पाते कि आपा पहचानना किवें है। तो आओ उस विचार नू आरंभ करन दे वास्ते अज दास ने ये शब्द चुनिया है। भगत कबीर जी अपने गुरु दे पास, गुरुदेव दे पास एक बहुत वड्डा अपना मसला लेके आंदे हैं, एक समस्या लेके आंदे हैं, एक सवाल लेके आंदे हैं, जो कि सवाल असां परसों चौथ दे कीर्तन दे विच उठाए कि इंसान दी जिंदगी च मौत फुली पई है, जन्म मरण दे गेट दी इसनू सोझी नहीं है, जमा दे ए वस पैंदा है क्योंकि बेहोश है परम दे विच है, लेकिन जिसनू सोझी आ गई है उस दे वास्ते जो जिंदगी है उस दे विच उपरामता आ जांदी है। मौत दी याद उपरामता लियांदी है, मौत दा ख्याल साडे बने बनाए एक शीश महल नू तोड़दा है, मौत दा जिक्र जो है साडे उते हथौड़े दी तरह पैंदा है अते ओ चित नू उदास करदा है। इस करके असीं उसनू अवॉयड ही करते, अवॉयड ही करते हैं उस ख्याल। लेकिन गुरुआं दी जो शिक्षा है वो कहते हैं अगर उसनू ना याद करोगे तो तुहाडा न्यो नहीं टुटेगा, उदासी नहीं पैदा होएगी। कबीर साहब का श्लोक है ना, कबीर हाड़ जरे ज्यो लाकरी, केस जरे ज्यो घास। कहते जदों मैं बंदे की यह दशा देखदा, हाड़ जरे ज्यो लाकरी, केस जरे ज्यो घास, ए जग जलता देख के कहो कबीर उदास। कहते मैं उदास हो जाना हाँ कि इंसान का अखीर दे विच आ हशर हुंदा, लकड़ी की तरह हड्डियां जलदियां हैं, घास की तरह इसके केस जलते हैं, बस आही है इसका अंत, आही है इसकी कहानी। कहते ये देख के फिर मैं उदास हो जाना हाँ। इस करके जदों कोई शख्स जिंदगी दी इस पिक्चर नू इस साइड नू देखता है तो उसके अंदर वैराग आंदा है। महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच आख्या है कि सारी दुनिया दे विच किसे किसे किसे किसे नू वैराग और उदासी पैदा होंदी है। तां दो कीर्तन पहले उस चीज ते कीते कि साडे अंदर मौत नू याद करके अगां जो साडे नाल वापरनी है उसनू सोच के सुन के साडे अंदर

एतन होती खाक में मारी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गौर करे अज मिला एक फरीदा तत्म कुंजड़िया अज मिला एक फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी

ने करना कबीरा तुरत केल के पुड़िया बांधी दे दिल सौ चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जा जी विचों जाए पाए बल

गगा गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत कांबे सासा देता बिलमना करियो मीत मैं बारक न जोबने मैं

चले चलना हार बिचारा ले मनो, चले चलना हार बिचारा ले मनो। गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी, जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

सकहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो लाल खेप

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सोझे कह कबीर सुनोरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

0: हर सत की ओ,
1: हर सत की ओ, गुरु रामदास आमता पुरवरा, गुरु रामदास आमता पुरवरा, जहां मान अकली में सिद्ध को सभा।

0: पिछाड़ियों क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान सिंचारियो
1: जन्म काल का जोड़ जो है समन्ने जन्म काल कर

सो गिरही सोदास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे ग्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ए है कि असी अपने आपे दी खोज करनी है? इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ए कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ए कोई साड़े वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ए कोई साड़े वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की साथ संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असी बैठे हैं ईमानदारी दे नाल कि असी अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते, जां कुछ साडा ध्यान है इस पासे या नहीं, साड़ी सोच है इस पासे या नहीं है, कि असी अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हैं या दिनों दिन अपने आपे नूं गवाई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने स्पष्ट आख दिता है कि सो गिरही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नू लभना है कि मैं कौन, मेरी असलियत की है, अपने मूल नू पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहते हम सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, कहते भी तू कौन है, कितों आया है, तेन इस चीज की खबर है? बस जिस दिन तू ये लभ लेगा कि तू कौन है, जिस दिन तू ये पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहते हैं अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, अपने आपे नू पछानना ही नाम की प्राप्ति है। कोई पूछे नाम की प्राप्ति की चीज है, नाम की है, अपने आपे नू पहचानना ही नाम की प्राप्ति है, और अपने आपे नू पहचानन तो बाद के मैं आ हां, फिर मैं अपने आप नू असल तौर पे प्यार करांगा कि मैं आ हां। जदों किसी नू ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनू अपनी असली हस्ती का पता लगेगा कि वो कितनी महान है, वो प्यार करन दे योग है, और फिर उसनू ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे पे इना अंतर की है। उत्थे जाके डुअलिटी द्वैष मेर ते सब खत्म होएगी जदों अपने आपे दी पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तियां नू इस भुलेखे च, इस टपले च, इस गलत फहमी च नहीं रहना चाहिदा कि असी इना दुनियावी रुझेवियां दे विच इतने रुझ जाइए, इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन ग्रिस्ती का भी होना चाहिदा है, ते ओ ना हो। आपनू नहीं बुझिया कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा, चाहे वह ग्रिस्ती है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई जंगम है।

चाहे कोई गृहस्थी होवे गृही होवे जिहड़ा सारे कर्म कुर्म ते निभांदा होवे कदे पाठ करा लिया कदे लंगर करा लिया कदे तीर्थां ते जाए दर्शन दीदारे कर आए अते बाकी दुनियावी जिम्मेवारियां भी सारियां निभांदा होवे लोकाचारी भी पूरी करता होवे को गिरही कर्मा की संद सारे कर्मा नूं पूरी तरह मिलांदा होवे करदा होवे पर कहिंदे हन

इस लाइन च यह किया है बिना अपने आप बुझण तो सारे ही परमात्मा की दरगाह दे विच कहिंदे कतार दे विच बन के खड़े किए जाणगे गुनाहगारां दे तरां किसे नूं भी कोई मुआफी नहीं है किसे नूं भी कोई मुआफी नहीं सो क्रिश्चियां वास्ते ये परम भुलेखा दूर करन वास्ते दास ने अज दा एक कीर्तन चुनिया है क्योंकि क्रिश्चियां दी जो दशा अज सारे संसार च खास करके असी तो अपनी ही गल करनी है ना जो नजर आंदी है वो ये नहीं नजर आंदी कि ग्रिस्तियां दा जीवन फोकस्ड इस गल देते है कि उन्होंने स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है इनलाइटन्ड होना है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है अपने आपे नूं बुझना है ये साडा मेन फोकस नहीं है लाइफ का ते ना ही असीं अगां बच्चियां नूं पास ऑन करदे हां जे ये साडा अपना जीवन का मुख कर्म नहीं है तो फिर बच्चों का किवें बनेगा उन्हां दा भी नहीं बन सकता फिर बाद दे विच सानूं पछतावा हुंदा है कि बच्चे दूर चल गए हैं बच्चे दूर जा रहे हैं असीं खुद ही दूर चले गए हैं सानू खुद ही नहीं पता कि ग्रिस्ती होके ग्रिस्ती का जड़ा मुख निशाना जीवन का वह की है महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच ए देख के समझ के कि ग्रिस्ती किथे भुल जांदे हैं ग्रिस्ती किथे भटक जांदा है ग्रिस्ती किथे खो जांदा है उसका बाणी च जिक्र किया है सानू सुनना चाहिदा है और सुनना साडे लई बहुत लाजमी है ताकि असी सुन तो बाद देख सकीए कि किते यही हालत ते नहीं साडी फिर सानू पता चल जाएगा कि असी गुरु नानक दे ही ग्रिस्ती हाँ जां असी कुछ हो रही हाँ गुरु महाराज ने कैटेगराइज किया है बाणी दे विच कि ग्रिस्ती जो है नंबर एक वो इंद्रियां दे रसां दे विच खो जांदा है सारी जिंदगी वो अपनियां इन सेंसुअल प्लेजर्स दे ही एंटरटेन करन दे विच गवा दिंदा है शरीरक सुखां नूं ही पालदा रहिंदा है शरीरक सुखां नूं ही वधांदा रहिंदा है अते शरीरक सुखां ते ही उसकी जिंदगी सीमित रह जाती है एक कुताही ग्रिस्ती यह करता है दूसरी कुताही ग्रिस्ती यह करता है कि उस दे जीवन च सिर्फ धंधा ही धंधा धंधा ही धंधा धंधा ही धंधा रह जाता है और उस दे जीवन दे विच कोई प्रायोरिटी नहीं होती कोई प्रायोरिटी नहीं होती धंधे तो अलावा उसका कोई जिंदगी का होर खास निशाना नहीं है अपने लिए भी और अपने बच्चों लिए भी ग्रिस्ती दो चीजां दे विच खो जांदा है नंबर एक शरीरक रसां दे विच इंद्रियां दे रसां दे विच दूसरा ग्रिस्ती खो जांदा है अपने धंधे की दुनिया दे विच आओ महाराज जी की बाणी दे विचों जो हुण मैं कह रहा हां उस दे उत्ते मोहर लगाइए कि गुरु बाबा जी का यह निर्णय है कहिंदे हन

तो इन्हों नए विचार ही समझिए पर नहीं कड़ा तो तेन उपदेश देना है के भाई ये कड़ा ए गुरु की हथकड़ी है इन हथाच मैनू पाया है इन हथा नाल पराए तनू ते पराए तनू मैं छेड़िया कुछ कड़े का कोई सिद्धांत है इन लोहे की तार मत ए कड़ा उपदेश देना है कि परधन पाहन तुल प्रिया परमात हमारे इन हथाच मैनू पाया तेरी हथाच कड़ा पाया होया किथे कड़ा हथां च पाना किथे कोख कोल वेसवा जाना फिर पहरेदार मुखातब की कहना है कि

अन भाई जो गाते चरणा के बैठे रो रो के चरणा ने सते पाठ का मेन बख नाले रोई जांदा है ते नाले करदा है अरदास केड़ी अरदास आवाज अपन कर ली तू ही ताई सारे कर दी पई है भी टाइम हो गया है पर इहो जिहा चुकाओ पता नहीं फिर कद मिलेगा कुछ नहीं इहो जी मैं पता नहीं फिर कद मिलेगा प्यारी साहिब संगत भाई जोगा सिंह पह के अरदास करता है आओ अपने कोलों भी कई गलतियां फलतियां हो जाएं भाई आओ जी अज भाई जोगा सिंह बख्शिया जाएगा तो असी भी बख्शी करो अरदास पहला सिर खोले पिछे सारी खुल जाए।

नार मुनि के चरणा से ढहे थे किसे प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नार जी तू सितानो जो मेरे भगवान दे दर्शनां नूं जा रहे हो, नारद तुसी तानो जिन्हां नूं मेरे भगवान दे दर्शन मिलणगे, नारद ने तक्या प्यार वाला मन ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू कह रहे है। नारद ने कहा क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहुंदा है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया नारद मेरी तां इक्को मंग है केड़ी।

आसा वाला जीवन बड़ा सुआदला हुंदा है, खुश रही हुआ है। आसा वाले जीवन विच आस है ना, इंतजार है ना, एदे च बड़ा सुख है, एदे च कोई अगम्मी रस है। साईं दी याद विच, मालक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां, पर प्यारी सतसंगत याद विच भी रहना ए भी इक अवस्था है। मालक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना, हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल बन गया। इस प्यास जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालक मेहर करे।

मिल साध संगत पद केवल ना तो हुण साडे जुम्मे काम लगा ते असीं किन्ना कनवांदे हां। सत्संग जी यकीन करो मैं पुस्तकां पढ़ के आप जी नूं बेनती कर रहा हां, उसने पुछना है जिंदगी का सफर हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। जिंदगी का सफर हौले हौले हौले तय करो, तुमको उसने बुलाना है तुम्ही को लौट जाना है। तो जदों उन पूछा जाके बेटा बच्चिए तीए वह भी ऐदा ही बुलाता सत्संग जी मिठ बोलड़ा है साजन रब जी बहुत शीरी कलाम है। उन पूछना बच्चा तेनू आ काम दे के भेजिया सी कि भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ, तेरे खाते विचों तो कबूतर निकलिया नहीं, हुण की करा मैं। तीए बच्चिए तेनू भी यह काम दिता सी कि बाबे दे घर केवल नाम है, नाम दी पूंजी है, नानक के घर केवल नाम, इसलिए तेरे ते फर्ज लाया सी के केवल नाम जपोरे प्राणी परो एक की सरना। तैं किन्ना का कीता है हिसाब ते सारन देना पैना, इसलिए अगे जिन्ना का कीता कीता आगे समझ चलो नंदलाला जो बीती सो बीती हुण तो लग पई है। मैं शायद अगे भी बेनती कीती होवेगी, मैं बहुत बहुत चिर हो गया ना तुहाडे चरणा विच आंदे कई साल हो गए ने, ते एक ट्रक सड़क तो लै के खड्ड वे डिग पिया, हुण चलण जोगा ने खड्ड वे डिग पिया है, पर मालक की करदे ने ओनू टो करके बाहर कढ लैंदे ने, ठीक ठाक करके ओहदे विच समान लद दिंदे ने, मंजिल वल ओहदा मुंह करके ड्राइवर नूं कहिंदे चल वे बच्चा लै जा, हुण ट्रक ते विच डिग्गिया होया सी पर कढ लिया वा। एन इसे तरह मेरी बेनती है सारे अगे हाथ जोड़ के जिन्हें कल तक अजे नहीं शुरू किया हुण शुरू कर लो, मंजिल वाल नूं मुंह होवे तां फिर तां यकीन करो कि मंजिल नेड़े आई का आई, हर कदम ते मंजिल घटदी जाएगी। ताजे रुख दूजे पासे नूं कीता जाना होवे लंडन नूं तुरे होइए इधर लीड्स नूं फिर कदों आएगी मंजिल, नहीं आएगी। महापुरुष यही कहिंदे रहे है कि नाम सिमरन करो, भजन करो, परमात्मा नूं याद करो। जद महापुरुष अपना फर्ज निभा रहा है तो सानू भी करना चाहिए। एक संत महापुरुष तुरे जाते से उन्होंने चुराहे भी देखा एक बहुत काला स्या धुआं पिया है, धुआं पिया है, नाल चेले बाल के भी सी, महापुरुषा ने भी देख लिया धुआं बिल्कुल अकड़ के खड़ा ते काला स्या नीला होया पिया, उन्होंने झट चुक लिया, महापुरुषा ने चुक लिया ते धुएं ने डंग मार दिता, जहरीला एडा सी पे पकड़िया पकड़िया हाथ नीला काला स्या सुज के एडा हो गया। नाल दे चेले कहन लगे बाबा जी महाराज जी पे इन रहन देना सी पिया, इत्थे देखो ना तुहाडे इसने डंग मार दिता तुहाडे हाथ हाथ की हालत की हो गई है। कहिंदे बच्चो सुनो गल सुनो बचन सुनो, जेड़ा इहदा काम सी ओह इह कर रहा है, जेड़ा महापुरुष का काम है पे चुकर के रांभे कर दे, इत्थे तो कोई राग ही जांदा होवेगा को मंजिल ते तुरिया जांदा होवेगा ओहदा लड़ जाएगा, ना कुछ नूं दारू मिल सकेगा ना दवा हो सकेगी। जद ए अपनी आदत नहीं छड़दा तां मैं अपनी फर्ज क्यों कुताही करा, जे अपनी आदत नहीं छोड़े उर्दू दा शेर, जे अपनी आदत नहीं छोड़े हम अपनी खूह क्यों बदले। इसलिए महापुरुष दा हर एक दा कर्तव्य है, कल नूं इत्थों अगे दर्शन दीदार करांगे गुरु जी सच्चे पातशाह रहमत नाल तुक कहीए ते कीर्तन की संपूर्णता करिए। आदरयोग मेरे परम आदरयोग संत बीबी जी सुरिंदर कौर जी तशरीफ फरमा होए ने, बहुत भागा की बात है। जिस दिन असि इधर आने दियारे में मार्च में ता भी सानू दर्शन देने आए सन, इतने आके भी कल मैं पता लग गया कि आदर जो बीबी जी भैन जी आए हुए ने, मन गदगद होया है। हुण संगत के दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न होया, गुरु सच्चा पातशाह जो इन्होंने जुम्मे ड्यूटी लाई है ना मालक ने तो यह नभा दे जान, ओ नाम जपा दे जान। तो कहो सत्संग जी।

दूसरे शब्द शरण को जी भरत नारदन पदार्थ वसा पर्याय वाणी गुरबाणी लागे तीन हस्ते।

0: बनाई राजपद रत नहीं दिलदा तैसे भी सुखमाया के उज्जो कहा दवा
1: अनु समझ बिगड़ो ना अजू समझ

आप वाहिगुरु उस्त कीती, आप वाहिगुरु उस्त कीती, नानक रूप वधाया अकाल पुरख नू।

दिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे पुरख जाने मत गुरमत, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत। मुख वड़ वड़ भाग।

हाँ क्या सलाही किरबजन। हे मेरे साईं, ए जीव तेरी की उपमा कर सकता है। मच्छी की जाने के सागर केडा वड्डा है, पंछी की जाने के आकाश केडा वड्डा है। हाँ क्या सलाही किरबजन, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मिलाई, मैं तुझ में बेली कौन। ए गरीब नवाज, मेरा तो आसरा ही तू, मेरे जीवन का सहारा ही तू। मेहरबान साईं, मेरे रब्बी दाता, बचपन खेल कूद च गुजर गया, जवानी मस्तानी अपने आप का पता ही नहीं रहा। गरीब नवाज हुण तो बुढ़ेपा आ गया। ए मेरे दाता, हुण तो कंधी का बरूटड़ा हां पता नहीं किस वेले मौत की छल आवे ते रोड़ के लै जावे। हे मेरे धन गुरु नानक दाता, मैनू दर्शन दे। दर्शना दी दात पे मंगदा है कौन, प्यारी सासंगत राय बुलार आखो श्री वाहे। राय बुलार, ओ राय बुलार, राय पवे तलवंडी दा मालिक। पहली वेरी गुरु नानक नु वेख्या, गुरु नानक जोगा हो गया। अज रो रहा है, बार खूह ते बैठा है, नौकर ने चौकी बिछाई है, उत्ते बह के राय बुलार रो रो के अरदासे पे कर। हे मेरे दाता, आ मैनु दर्शन दे। अखां चो अथरू डिगदे, चिट्टे दुध वर्गे दाड़े ते आखे पैंदे, मानो सुचे मोती जड़े हन प्यार दे। रोंदे अखां दियां सिपियां चो प्यार दे सोची सुचे मोती डुलदे, ते अरदास करदे कि आओ आपां वी करिए प्यारी साध संगत अरदास। अज राय बुलार बेनती कर रहा है, हे निरंकार, धन गुरु नानक सतेव पातशाह, 12 साल का विछोड़ा किवें सारे आ जा सकता है। आओ दर्शन दे, अखां वस रही हैं, ते रसना बेनती कर रही है कि पहले सेवक बोले।

पिताजी मेरे ननकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण ता रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यारे, गुरु नानक दे प्यारे। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैण इशनान कीता, करदी पाठ ते दही रिड़काउंदी है, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। ते वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उडिया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सच्चे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाज़ किवें सुन लेंदे हो मेरे सच्चे पातशाह? हजूर कहन लगे हां मरदाने तारा भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेबे विच आड़ती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गई न पुराने आड़ती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है, ए जरा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सदगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन, किसे गुरमुख ने लिखे है कि तार विन दी चीजां परोम दीए, तार विन दी चीजां परोम दीए, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी तार विच ही शब्द परोके ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी? मरदानिया नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 साल तू विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तू, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है आखो सही वाली। पर मरदाना काला है, 12 सालां तो बाद घर आया है, एदा कर्म काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपां? तो बाबा जी ये बचन करदे सन कि भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नूं कहा, मरदाने ए पढ़ की

फिर पथकहरे ने तेन दुख न भुख तिन निधन न कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदी, वो निर्धन नहीं रह सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उसदे। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, वो किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समपै, वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक विच ओनू वेखूगा। सहज समपै तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, उसका स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जाऊगा, गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, ओदे विच एनी शक्ति आ जाऊगी, वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू वसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ये सारे सुख ओनू मिलन। अप है पट रिप मध ते सक्यथ तिनर जालप बने, किनू ये सुख मिलनगे, किनू ये वड्याईयां मिलनगियां। गुरु अमरदास सुप्रसिद्ध जे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाएंगे, ये सारे सुख ये सारे

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को, स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को। स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

एक मांगन पिखारी दी देख अधीने निराशो ना बिडार है। बैठत है जाके द्वार आशा के बिडार स्वान अंत करना के तोर टूकताए डार है। पायन की पनीर है पर हरी परी काहू काहू काज उठ चलत सुमार है। छाड़ अंकार छाड़ होए पुरमार्ग में छाड़ अंकार छाड़ होए

उत्तम मत्तम नीच लख गुरमुख नीचो नीच सदाए पैरी पैपा खा कोए गुरमुख गुरसिख आप गवाए साध संगत ओ पाओ कर सेवक सेवा कार कमाए मिठा बोलन निव चलन हथों दे कै भला मनाए शब्द सुरत लिवलीन होए दरगै मान निमाणा पाए

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे, तावन पर उपकार नो, गुरु सिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी, माया विच उदास रहंदे।